मैं घूम कर मैं परेशी जी ऐसे जी बोले मुरुकुन रोमन अब हम आपको ना मागी मागी बाबा मागी रीड ऐसे गए वे ओयो